0: Chennai.
1: We, the students of MOP Vaishnav College, are here to welcome you. You're listening to MOP Community Radio Service 107.8. Our radio, our community, our pride. Dil se dil kabhi juda nahi hote.
0: Yun hi hum kisi pe fida nahi hote.
1: Mohabbat se badhkar to dosti ka rishta hai.
0: Kyunki dost kabhi bewafa nahi hote.
1: Namaste, sat sri akal, assalam walekum, vanakkam, kemcho. हम हैं एमओपी की छात्राएं जो आज आपको दोस्ती के बारे में कुछ बताएंगी। जी हाँ, हमारा विषय है दोस्ती, जो सबको पसंद आती है और सभी उम्र में पसंद आती है। हम हैं आपके होस्ट और दोस्त आरजे सिमरन और आरजे मुस्कान।
0: तो आरजे मुस्कान, अब हम किस विषय से शुरुआत करेंगे?
1: अब हम सुनेंगे कृषि की आवाज में एक कविता।
2: मैं हूँ कृषि और आज आपको सुनाऊंगी एक कविता। दोस्ती है अनमोल रत्न, नहीं तोल सकता जिसे कोई धन। सच्ची दोस्ती जिसके पास है, उसके पास दौलत की भरमार है। न ही जीत है, न ही कोई हार है, दोस्त के दिल में तो बस प्यार ही प्यार है। भटके जब भी दोस्त संसार के मोह जाल में, भटके जब भी दोस्त संसार के मोह जाल में, खींच लाता है सच्चा दोस्त उसे अच्छाई के प्रकाश में। छोड़ देता है जग सारा जब मुश्किल भरी राह में, सच्चा दोस्त साथ देता है तब जिंदगी की राह में। बनी चाहे दुश्मन क्यों ना जमाना सारा, बने चाहे दुश्मन क्यों ना जमाना सारा, सच्चा दोस्त साथ देता है सदा हमारा। दोस्त के लिए कुर्बान होता है जीवन सारा, हर मुश्किल में बनता है वो सहारा। सच्ची दोस्ती को वक्त परखता है हर बार, सच्ची दोस्ती को वक्त परखता है हर बार। वक्त की हर परीक्षा से हंसते हुए पास करना ही दोस्ती की पहचान है। दुनिया की शोहरत की न जिसे दरकरार है, दुनिया की शोहरत की न जिसे दरकरार है, सच्चा दोस्त रखने वाला संसार में सबसे धनवान है, सबसे धनवान है, सबसे धनवान है। धन्यवाद।
0: वाह वाह कृषि, तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। तो आरजे मुस्कान, अर्ज किया है दोस्ती पर, बिगड़ी हुई जिंदगी की कुछ इतनी सी कहानी है।
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: 20% तो हम बचपन के कमीने थे और 80% कमीने दोस्तों की मेहरबानी है।
3: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: चलो इस मेहरबानी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं दोस्ती पर एक कहानी, सीमा की जुबानी।
4: नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं आपको दोस्ती पे एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक समय की बात है, दो मित्र थे। वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। जब उसे मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। नौजवान ने बादशाह को कहा, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है और मुझे खुशी खुशी मौत के आगोश में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए कि मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिलाऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो उस नौजवान के मित्र ने कहा कि महाराज, मैं इसकी जमानत देता हूँ, अगर ये लौट कर नहीं आए तो इसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिएगा। तो बादशाह हैरान रह गया, क्योंकि अब तक उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। तो बादशाह ने उसे गांव जाने की सहमति दे दी और उसे 6 घंटे का टाइम दिया गया। नौजवान चला गया और उसने देखा था कि उसे लौटने में 5 घंटे का समय लगेगा और वो आराम से जाकर आ सकता है। अपने बच्चों से मिलकर लौटते समय रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं, और उस नौजवान को भी चोट आई और इसी वजह से उसे आने में देरी हो गई। उधर 6 घंटे बीत जाने के बाद उसका मित्र खुश हो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका मित्र नहीं आए ताकि वो अपने दोस्त के काम आ सके। मियाद पूरी हो जाने के बाद मित्र को फांसी पर लटकाया जा रहा था कि नौजवान आ पहुंचा और उससे कहा, अब तुम घर जाओ और मुझे विदा करो। तो मित्र ने कहा, ये नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई है। नौजवान ने कहा, ये मेरी सजा है, सो जाहिर है, मुझे इसे सहनने दो, तुम अपने घर जाओ। दोनों मित्र की सजा को बादशाह देख रहा था तो उसकी आंखें डबडबा आई और उसने दोनों को बुलाकर कहा, मैंने तुमको माफ़ कर दिया है और तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है और उसके बाद बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। धन्यवाद।
1: तो आप सुन रहे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
5: दिव्या, टाइम आ गया। ராகுல் சீக்கிரம் வா,
6: ராகுல் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கார்த்து
5: வரேன் திவ்யா.
6: அம்மா,
7: என்னம்மா? நம்ம அப்பாவும் உனக்கு

0: नमस्ते, आप फिर लौटे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8, आर रेडियो, आर कम्युनिटी, आर प्राइड।
1: आरजे मुस्कान बहुत हो गया भावनाओं में बहना, और अब सुनते हैं एक गाना बिल्कुल ही खूबसूरत सा, जो दोस्ती के ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। तो लीजिए सुनते हैं एक गाना कृष्णा, निकिता और लक्षिता से।

0: क्या गाया है, क्या गाया है निकिता, लक्षिता और कृष्णा ने, बिल्कुल ही बेसुरी थी तुम्हारी आवाज। अरे यार दिल पे मत लेना दोस्त, तू मजाक तो होना ही था।
1: वादा करते हैं दोस्ती निभाने की कोशिश करेंगे, तुझे कभी न सताएंगे, जरूरत पड़ी तो दिल से पुकारना, मर भी जाएंगे तो मोहरत लेकर आएंगे।
0: वाह वाह वाह, आरजे मुस्कान क्या कहा है। चलो अब आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते एक चर्चा के वातावरण में। चर्चा इस बात पर होगी कि दोस्ती पर भारी पड़ेगा प्रेम या प्रेम पर भारी पड़ेगी दोस्ती। नमस्ते, मैं हूँ श्रेया और मैं आपको आज बताऊंगी कि प्रेम पर भारी पड़ेगा दोस्ती या दोस्ती पर भारी पड़ेगी प्रेम।
2: प्यार जब दुख पहुंचाता है दोस्त हमेशा मलहम लगाता है, प्यार जब आंखों में आंसू लाया उन्हें दोस्त चुपके से पहुँच गया, प्यार जब टुकराया दोस्त उसे आकर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर गया, प्यार में जब आप थे तब दोस्त चलना सिखाया, प्यार जिंदगी को आबाद या बर्बाद कर सकता है पर दोस्त सिर्फ आबाद कर सकता है, प्यार जब जीने के रास्ते बंद कर देता है तब दोस्त रास्ते दिखाता है। अब बताओ लोगों फिर भी क्यों प्यार में अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, हमेशा याद रखना दोस्त, हर एक दोस्त जरूरी होता है।
1: तो आज ये सिमरन माहौल बहुत गर्म सा हो गया है, इसे ठंडा करने के लिए थोड़ा बर्फ ला दे।
0: नहीं नहीं आज ये मुस्कान, बर्फ की नहीं, हमें थोड़ा KBC की जरूरत है।
3: नमस्ते, स्वागत है आपका KBC में, जहां आप और हम मिलकर देंगे कुछ सवालों के जवाब। तो आज हमारे साथ गर्म कुर्सी पर बैठी है निकिता। तो निकिता, आपका पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर 5 रुपए के लिए, तुम इसे कितना निकालोगे तो क्या बचेगा? आपके ऑप्शंस है बहुत में से बहुत, सब में से सब, थोड़े में से थोड़ा, कुछ में से कुछ।
2: मुझे लगता है कि इसका जवाब है ऑप्शन बी, सब में से सब।
3: सब में से सब निकाल दोगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैसे आएगा? आपका दूसरा सवाल, महिलाओं के लिए सबसे अच्छी कॉलेज कौन सी है चेन्नई में? आपके ऑप्शंस है MOP, दूसरा ऑप्शन MOP वैष्णव, MOP वैष्णव कॉलेज, MOP वैष्णव कॉलेज फॉर वुमेन।
2: MOP वैष्णव कॉलेज फॉर वुमेन।
3: दोस्ती के लिए क्या जरूरी है? दोस्त, दोस्ताना, लड़का, लड़की।
2: दोस्त।
3: जैसे वो गाना है
4: यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है।
3: तो आप मुझे बताइए कि दोस्ती कितनी बड़ी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर?
2: 2 सेंटीमीटर।
4: जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा।
3: इससे आपका क्या मतलब है, खाना पीना, मौज या मस्ती?
2: मुझे लगता है कि ये चारों ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसके बिना दोस्ती बहुत अधूरी है।
3: जी धन्यवाद आपका हमारे साथ KBC खेलने में, आपका इनाम है 10 रुपए।
2: धन्यवाद।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8। आर रेडियो आर कम्युनिटी आप राइट। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
6: हे यू, हे

0: of us use air conditioners in our daily lives? Did you know that the usage of air conditioner releases harmful chlorofluorocarbons into the environment? This CFC leads to global warming and in turn gives faster melting of glaciers, more severe floods, prolonged drought, and even UV rays to enter the earth, causing skin cancer, mutation, genetic disorders, and whatnot. Do you still think AC is cool? Well, here's the eco tip of the day to help stop global warming. Minimize the usage of air conditioners, and even if you do, do not set the temperature below 24 degrees Celsius. So here's your chance, make a change.
1: Produced and brought to you by MOP Community Radio 107.8 FM.
2: Welcome back to MOP Community Radio 107.8. Our radio, our community, our pride. So aaiye dosto, hum Saloni ki zubani, sunte hain dosti ke mahatv ke bare mein.
3: मैं सलोनी दोस्ती के महत्व के बारे में बोलने वाली हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, अच्छे दोस्त दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और यह सच भी है, क्योंकि जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के दौरान हमारी लाइफ को बैलेंस करने में हमारे इन्हीं आसपास रहने वाले और हमारी लाइफ को समझने वाले दोस्तों का हाथ होता है। और हम वो हर चीज उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो हमें अपने माता पिता के साथ नहीं कर सकते, बाकी लोग के साथ नहीं कर सकते, फिर चाहे वो हमारी खुशियों के पल हो या कोई बड़ी चिंता। हम सब कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके सजेशन से अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अच्छे दोस्त होने की वजह से जिंदगी में अच्छे अनुभवों की संख्या बढ़ जाती है और हम कहीं अधिक प्रभावी तरीके से जिंदगी को जी सकते हैं और गलतियाँ होने की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि हमें हर किसी फैसले में लेते समय बहुत सारे अनुभवों के साथ लेना पड़ता है। धन्यवाद
2: यारो, मेरे दोस्त सलोनी के विचारों ने तो मेरे आंखों में आंसू ला दिए। इसी को बढ़ावा देते हुए आ रही है मेरी एक और एक दोस्त सोनल।
4: मैं सोनल आपको दोस्ती के महत्व के बारे में और बताती हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप की अगर हम बात करते हैं तो एक जुमला बिल्कुल सही बैठता है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। और यह सही भी है, क्योंकि बेशक हम अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में फ्रेंड्स के बिना ज़िंदगी अधूरी है। और वो कई तरह के हो सकते हैं, क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम इतने बड़े समाज में रहते हैं कि आर्थिक तौर पर ना सही भावात्मक तौर पर हम कई तरह के लोगों पर निर्भर करते हैं, जिनमें हमारे आसपास के लोग भी आते हैं, हमारे घर वालों और हमारे उन रिश्तों के साथ जो हम अपने जन के साथ मिलते हैं। फिर भी इंसान का जो बाहरी दुनिया के साथ कम संपर्क में रहता है वह उतना सामान्य और सहज नहीं होता है जितना कि वो लोग होते हैं जो लोग और दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम में खाने पीने और बाकी की ज़रूरतों के साथ साथ सामाजिक तौर पर खुद को सुरक्षित महसूस करने की भावना भी होती है। और वह तभी पूरी होती है जब हम अपने मन की बातें और अपने दिन अपने किसी ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं जिसके विचारों का आदान प्रदान होता है और हमें एक तरह से सुखद और सुरक्षित महसूस होता है।
2: धन्यवाद।
5: जिंदगी भर साथ निभाती है दोस्ती, राह में तन्हा छोड़ता है प्यार, कश्ती पार लगाती है दोस्ती, मझदार में डुबोता है प्यार, सुनते हैं आरजे मुस्कान को क्या कहना है इस दोस्ती पर।
2: यारो, वो दोस्ती क्या जो हर सुबह हमें चुटकुले भेजकर परेशान न करे, जिंदगी में जो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी, जो हमारा टिफिन चुरा ले, जिसकी बदौलत हम हर क्लास से बाहर निकाले जाते हैं। दोस्त वो है जो हमें गिराता है, हम पर हंसता है, पर वही हमें उठाता है। दोस्त वो होता है जो हमारे घर में हमें ही मेहमान जैसा महसूस कराता है। हमारा दोस्त वो होता है जो पूरा सेमेस्टर का पोर्शन 5 मिनटों में ही पढ़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आपके किसी भी दोस्त को याद करते हैं तो अभी उसका नंबर डायल कीजिए और उससे बात कीजिए। धन्यवाद।
6: चाय के लिए जैसे दोस्त होता है वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ऐसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, कोई सुबह 5 बजे नींद से जगाए, कोई रात को 3 बजे जान बचाए, एक तेरी कड़की में शेयरिंग करे और एक तेरे बजट में स्नीक इन करे, कोई नेचर से गेस्ट कोई होस्ट होता है, पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है।
7: एक घड़ी घड़ी काम आए पर कभी कभी कॉल करे,
5: और एक कभी कभी काम आए पर घड़ी घड़ी कॉल करे।
7: गॉसिप का कोई घूमता फिरता सैटेलाइट, कोई साथ रहे तो करे सब ऑल राइट। कोई एफर्टलेस कोई फोर्स्ड होता है, लेकिन हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। चैट रूम फ्रेंड, कोई क्लासरूम फ्रेंड, कोई बाग में रेस वाला रूम रूम फ्रेंड, शॉपिंग मॉल वाला शॉपिंग फ्रेंड हो या एग्जाम हॉल वाला कॉपिंग फ्रेंड। मूवी बड़ी ग्रूवी बड़ी हाई बड़ी बाय बड़ी जोक बड़ी पोक बड़ी गाना बड़ी शाना बड़ी चड्डी बड़ी यार बड़ी एवरीबॉडी सब बड़ी ए टू जेड।
6: गिन गिन के नाम भी जरूर होता है, पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, लेकिन हर एक फ्रेंड जरूरी होता है।
5: आशा है कि आपको हमारा दोस्ती पर ये विचार विमर्श और कम्युनिटी रेडियो सर्विस पसंद आया होगा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारी प्रधानाचार्य को और हमारी अध्यापिका को, जिन्होंने हमें यह करने के लिए एक मौका दिया, इसे हमें इस काबिल समझा और उनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बनाए रखा। अंत में मैं भगवान को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया किसी भी चीज़ पर। और कीप लिसनिंग टू एमओपी कम्युनिटी रेडियो सर्विस 107.8, आर रेडियो आर कम्युनिटी आर प्राइड।